कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: ना फील करें
1: करजने करी ना माया दिलो ना शे दिलो ना मने माया सिलो ना।